जुगो जुग अटल। चबुर शतर तखदी मालक गुरुआ के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारे सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरण कमलों पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश किया है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रहियां ने उन्हां चल रहियां लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सर ते रखण। मालक जी आप रसना उत्ते वरत के अपने पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैण। आप संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे। दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे आं। लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद।

और नाही कोए, ना को होआ ना को होए, जे वडे आप ते वड तेरी दात, जैना देना करके कीती रात।

परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सही मिल संगत।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया,

सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी।

तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हरते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी।

सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई।

सवारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने

पर जबया करख कर तुहों कबहूँ तुम मैं मिलत दहे धर सबहूँ जित्ते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत बेद भेद अर आलम।

धरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण गाता जे अस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तोहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताके ताप तनक मै हरे हो सिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा।

परी सर्वठोर्म हो सहई दुष्ट दोखते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो।

दोहरा सगल दोहारी को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, महिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा। सगल दोहारी को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, महिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सीती, मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा, मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा, क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किच है, जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जैनों इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंचशब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होआ तित कर अनाद बाजे, आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुन ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे,
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईआ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को पहुंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया

तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊँचे ते ऊँच सगल समगरी तुमरे सुतर तुम ते हो सो

वसंसेलाम आओद कटहै दिन श्रेणारे मन गुरु मिलका सवारे रहाउ ए संसार बेकार संसे मैं त्रयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए बियावे रस कथ कथा दिन जानी न्या को आए सोई।

सच सभा दीबाण सच सच्चे पहतर्यो सच्चे तखत निवास सच तपावस करियो सच सिर जो संसार आप

0: जेह लग पौजल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे, बल्यो चराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम, प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिखियाता, तास चल हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर,

अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाकश फारे कर आज, फुरन द्रौपदी लाज रख